FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। इस समय सवेरे के 8:54 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। वहीं भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा 9:20 पर। साजों पर धुन कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:40 पर। वहीं गाने पुराने जमाने के आप सुनेंगे 10:00। सवेरे 10:00 आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुन पाएंगे गाने नए तराने नए।

युवा साथियों की पसंद युवाणी कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे, और माताओं और बहनों के लिए पणिहारी कार्यक्रम 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, वहीं 6:20 पर होगा कार्यक्रम माटी के स्वर। किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7 बजे किया जाएगा। वहीं एक बार फिर से आप फिल्म संगीत सुनेंगे 7:30 पर। रात्रि 8 बजे होगा आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। वहीं 8:30 पर प्रस्तुत होगा चिरमी लोक संगीत।

और प्रसारण सभा के अंत के करीब 9 बजे आप सुनेंगे दर्द भरे गीत। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: एक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोर लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
2: शिलान्यास लोकार्पण का और आम सभा का प्रोग्राम स्थापित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं हो, इसी प्रकार के बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं, आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के सभी काम निर्धारित समय सीमा से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में हुई परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजा संबंधी कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकार को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम प्रगति पर हैं। नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि विभिन्न फीडर, नहरों, पंप हाउस, चंबल एक्वाडक्ट और अन्य घटक पर कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक

0: शिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में आज से सभी जिलों में 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि अभियान की थीम जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने सही और खुशहाल पर जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
1: अभियान के तहत आशा सहयोगिनियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर योग्य दंपति सर्वे किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गर्भ धारण के बीच स्वस्थ अंतराल और आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों पर खुली चर्चा होगी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिक गर्भ निरोधक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। सुखी परिवार और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आशा सहयोगियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा आम जन को जागरूक किया जाएगा। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण ट्राई के बीच दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के 5,68,000 से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क का ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे का काम 1,40,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। डाक सेवक अपनी नियमित डाक वितरण गतिविधियों के दौरान ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और नेटवर्क संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कमियों की पहचान की जाएगी और नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सर्वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। केवल अधिकृत प्रगणक ही ओबीसी परिवारों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी दर्ज कर रहे हैं। आयोग के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक विकल्प आम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकृत प्रगणकों के लिए वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था है। आयोग ने आमजन से सर्वे को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक बूंदी दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा। एमपैक्स श्रेणी में नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पहला, बूंदी जिले की भिया ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दूसरा और घाट का बराना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एमपैक्स मिलकर काम करें ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज, प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठ पूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के 9:20 हुए हैं और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में पहली भक्ति रचना प्रस्तुत है हरि ओम शरण की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, हरि ओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, वंदना कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना प्रस्तुत है सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साजों पर धुन, जिसके अंदर आप सुनते हैं फिल्मी गीतों की धुनें। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली धुन हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म से, जिसे पियानो और सैक्सोफोन पर बजाया गया है। पियानो पर हैं राजीव सिक्का और सैक्सोफोन पर हैं नरेंद्र टोनी। प्रस्तुत है ये धुन।

श्रोताओं, आंधी फिल्म के गीत की धुन अभी आप सुन रहे थे। पियानो पर थे राजीव सिक्का और सैक्सोफोन पर नरेंद्र टोनी। अगली धुन हम आपको सुनवा रहे हैं लेकिन फिल्म से, जिसे वायलिन पर बजाया है वायलिन ब्रदर्स यानी देव शंकर और ज्योति शंकर ने।

श्रोताओं, लेकिन फिल्म के गीत की धुन अभी आप सुन रहे थे वायलिन ब्रदर्स की, वायलिन के साथ हम अगला जो धुन है वो आपको सुनवा रहे हैं गोलमाल फिल्म से, जिसे पियानो और सैक्सोफोन पर बजाया है राजीव सिक्का और नरेंद्र टोनी ने।

श्रोताओं, गोलमाल फिल्म के गीत की धुन अभी आप सुन रहे थे। पियानो पर थे राजीव सिक्का और सैक्सोफोन बजाया था नरेंद्र टोनी ने। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कुछ पुरानी फिल्मों के गीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: साथी हूँ साजन का घर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अजूबा फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में मुद्दत फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही आज का गाने पुराने ज़माने के कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए, जिसमें हम आपको सुनाएंगे नई फिल्मों के गीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने। प्रस्तुत है ये गीत।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अगला गीत प्रस्तुत है लुटेरा फिल्म से, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने।

श्रोताओं, लुटेरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मौलानी ठाकुर की आवाज़ में। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे खूबसूरत फिल्म से, जिसे गाया है जसलीन कौर रॉयल ने। इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

सोना मोहपात्रा की आवाज़ में फुकरे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत प्रस्तुत है ओ रोमियो फिल्म से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

साथियों, और रोमियो फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म संगीत का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर द रिवेंज फिल्म से, जिसे गाया है नवतेज सिंह, राहेल खान साहब, जैस्मिन सैंडल्स और सुधीर यदुवंशी ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: श्रोताओं, धुरंधर द रिवेंज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था नवजीत सिंह, राहिल खान साहब, जैस्मिन सैंडल्स और सुधीर यदुवंशी ने। रैपर्स थे रेबेल और टोकन। इस गीत के साथ ही हमारा गाने नए तराने नए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे अरे

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और
2: जल्दी
3: है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती पर, अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

0: लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।

0: गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
1: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला।

राष्ट्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल यार रहमान का संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लगजन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्षों के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत समुद्र से हवा में और समुद्र की सतह तक मार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। श्री शर्मा कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम से 1,258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोर लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास।

0: शामिल है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज जयपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आज दूसरे दिन आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कल हुई जनसुनवाई में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा ने विभिन्न वर्गों के सुझाव सुने।
1: कल काफ़ी धर्म क्षेत्र के लोगों से और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी जनसुनवाई में पार्टिसिपेट किया गया था। उनके सुझाव, उनके मतों को और उनकी चिंताओं को हमने कलेक्ट किए हैं। कल कुछ लोग जो जनसुनवाई में नहीं आए थे उनके लिए भी आज हमने जनसुनवाई का ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे विज्ञ अधिकारी मौजूद है, उन्होंने जो व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं, जो संगठन आ रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके उन सभी संग्रहण करके उनको समिति के समक्ष प्रेषित की जाएगी, उनके ऊपर समिति निर्णय लेगा।
0: विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जिलों में आज से जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह की भी शुरुआत हुई। जैसलमेर और भरतपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आमजन से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार और जागरूक समाज के निर्माण की अपील की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या ही सशक्त समाज, समृद्ध राष्ट्र और सतत विकास का आधार है। रेलवे जल्द ही आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा संस्करण जारी करेगा। कल आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के अधिकारियों ने जयपुर के एमएनआईटी के विद्यार्थियों को वेबसाइट का बीटा संस्करण दिखाया और उनसे सुझाव लिए। नई वेबसाइट में कैप्चा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज होगी और यात्री की जानकारी सुरक्षित रहने से बुकिंग आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई वेबसाइट को यात्री आरक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है और नया पोर्टल अगले कुछ महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चले।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा पूछिए तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नजरअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाँ पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं, बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि

0: 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
0: पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगु करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते हैं।

होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानियां रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे, ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है, अवसाद भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूं तो न मनाती हूं न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत जरूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना जरूर गा के सुना दीजिए कि यहाँ सुबह जरूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिल लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफर। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद्व हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह।

शाह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफर सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो,

देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक

0: वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।

0: रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्प्टन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन,
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिल लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका

पूरा परिवार गांव चलाला काठिया वार्ड से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

वो पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पीठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुक्त हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास की जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, हुमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई

0: रहीम की ठाणी, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी दलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहां है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूं और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहां?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूं, जहां का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही मां, यहां इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुक्म पीर बाबा।
0: अल्लाह।
1: बाबा
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घड़ी कमांडाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगणियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुम अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुकुम अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोनी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्रछाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैतों और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहां आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती
3: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: बॉर्डर पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया. हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता.
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी. आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो.
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
1: राम सिंह
3: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
3: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
4: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
3: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
4: कैसी वारदात?
3: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
4: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
3: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
4: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
3: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
4: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
3: अच्छा, अलविदा।
4: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: नहीं भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी देरी से
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूं।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रहीम भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रहीम भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी राज से टक्कर लेते रहना।

0: जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
1: या खुदा, तेरी खुदाई पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमा, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ऊझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिए जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
0: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
1: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
0: अच्छा।
1: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
0: जी,
1: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
0: जी।
1: तो मेरा जो ननिहाल था वो, चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता
0: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
1: जी,
0: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
1: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
0: जी,
1: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
0: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।
1: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
1: जी जी।
0: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे।
0: हाँ।
1: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
0: फ्री नहीं बैठ।
1: हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के, इतना आपने जिंदगी हो गई है आपके, 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है, और वही पूरी साहब ने था
0: जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लेवल के कलाकार उनकी, मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी
1: जी।
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है
0: जी।
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: गले। वाह बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक चार लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली।
0: हाँ,
1: में
0: जी,
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते हैं वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के

0: गाने से।
1: जी
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: उनसे मैंने संपर्क किया। और नीरज जी, गोपाल दास नीरज,
1: नीरज
0: उनसे गीत लिखवाया महानदी पे। और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं और एड।
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी,
1: महानदी।
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं, वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत है। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: न चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा, तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी, 5,000 उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
0: माध्यम बनी।
1: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
0: जी।
1: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
0: जी। एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
0: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
1: जी।

0: आपके निर्देशन पर हम आते हैं, लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पल हम सीखते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
0: जी।
1: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
0: जी,
1: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो, उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
0: उनकी मेहनत
1: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
0: जी,
1: स्टार
0: जी,
1: नहीं बनते है ना।
0: तो
1: जी,
0: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ न कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
1: बहुत दुख होता है और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
0: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी।

Bobby.

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन। आज का कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपका साथी आनंद पुरोहित। आज के कार्यक्रम में विशेष होगा फोन करें गीत सुने, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बात से। और आज है विश्व जनसंख्या दिवस, तो उसकी करते हैं बात। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें केवल बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों से परिचित नहीं कराता, बल्कि यह भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि बढ़ती आबादी का हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव और उस पर युवा सोच, आज इस विषय पर हम बात करें। तो साथियों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और जागरूक हो तो वही देश के विकास की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। लेकिन यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े तो पानी, भोजन, ऊर्जा, आवास, शिक्षा और रोजगार सभी मूलभूत आवश्यकताओं पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है, लेकिन यह विषय युवाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। युवा केवल समस्या पर चर्चा करने वाले नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा भी है। जागरूकता फैलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करना, पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाना और संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग करना, ये सभी कदम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। श्रोताओं, हमें यह भी समझना होगा कि केवल जनसंख्या बढ़ना ही समस्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का असमान और अनियोजित उपयोग भी एक बड़ी चुनौती है। यदि हम जल बचाएं, वृक्ष बचाएं, ऊर्जा की बचत करें और जिम्मेदार नागरिक बने तो सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम जनसंख्या, पर्यावरण और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे तथा अपने परिवार और समाज में जागरूकता का संदेश पहुंचाएंगे। ये तो थी विश्व जनसंख्या दिवस पर आज की हमारी बात। और अब शुरुआत करते हैं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम की। दोस्त, पहला गीत BR मिर्धा कॉलेज नागौर से अनवर हुसैन जी का आया है और ये सुनना चाहते हैं जंगल लव फिल्म का ये गीत। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: अगला गीत अलाय से अनूप सिंह की पसंद का, फिल्म राजा और रंक से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी जो गीत आपने सुना, इसे सुनने की फरमाइश बडली से परसाराम बडारिया की भी थी। और अब सुनते हैं राठौड़ी कुआ नागौर से निकिता की पसंद का ये गीत फिल्म उपकार से।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अजमेरी गेट नागौर से इकबाल की पसंद का गीत फिल्म भरोसा से अब सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने। अगला गीत फिल्म गरम मसाला से सुनना चाहते हैं, मोहम्मद सोहेल, तिगरी बाजार, नागौर से। तो इनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

अब उन श्रोताओं के नाम जिनके गीत हम आज नहीं बजा पाए, जाट कॉलोनी नागौर से रामनिवास सांगवा, लोहारपुरा से उमर हसन, अलाई से बलवीर सिंह, शास्त्री नगर नागौर से कुंभाराम चावला, तेलीवाड़ा नागौर से पप्पू हलवाई। इसके साथ ही युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथ ही आनंद पुरोहित को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: बेना बेटी ने देखो आपा सुहासनी घररी लक्ष्मी रे रूप में तो घनी बार देखा और बिरा माता पिता बड़ा होनरी वजू बिरा संरक्षण बनन बिरी देखभाल भी चोखी तरिया करा। पर मैंने देखो आपा अपनी जिम्मेदारी ने चोखी तरिया निभावता। आपा घनी बार देखो वो भी भूल जावा कि अपनी लाडली भी भावनारी मूरत होवे, बिरी भी घनी प्रकार री इच्छा और भावना होवे जकी बा किन्ने भी नहीं बता पावे और आपरे मन ही मन में बिने बिरे शंका विचारारा जाल में बा उलझोड़ी रहे और बिरे मन री एड़ी दशा बिने घनी बार विकट परिस्थितियां में डाल देवे जका ने बा खुद भी पहचान को नहीं पावे और आपा बान बिरी ना समझी ने बानी गलतियां कमियां मानकर बिन पर घना नाराज हुआ। जी हाँ कि मैंने देखो आपा के सगला के घर में किशोर बेटा बेटियां हो वही है नहीं और आपरी किशोरावस्था रे कारण में देखो कदी कदी आईना रा समय बनता सवरता भी दिखे तो कदी टीवी के समय बैठा मिल जावे या पछे गुमसुम सा भी बैठा दिखे और कदी तो घना ही हंसता बतियाता भी दिखे है नहीं। और ऐसा सब क्रियाकलाप जब आपनो बेटो करे तो आप अभी पर कोई भी ध्यान को नहीं देवा और ओ ही अगर बिने देखो टोकनो चावा और ओ ही अगर आपा अपनी बेटी करती दिखे तो आपा भी बिने चिंता को विषय बना लेवा और बीर पर नजर रखनी शुरू कर देवा या बात बात पर बिना टोकनो शुरू कर देवा और आपरा विचार प्रकट करने की छूट पर भी बीरे पाबंदी लगा देवा। जीरो कहिए बिना की बात को घनी हताश और निराश हो जावे और वह मन में कुंठाओं ग्रस्त होवन कदी कदी देखो आक्रामक स्वभावरी भी हो जावे। इस वास्ते बिना देखो आपने अपनी युवा होती बेटी रे साथ है संरक्षक की तरह तरह पेश आता ही सहली जड़ो व्यवहार भी करनो जरूरी होवे। जीरूंगी देखो बा कहीं अपने आपने मन में कोई भी अड़ी बात है या वो कहीं आगे आपने भविष्य में करनो जावे या बिरा मित्र कह रहा है बा कैडी सहेलियां के साथ उठ बैठ रही है या बिरे साथ कोई अभद्र व्यवहार हो रही है तो बस सब चीजें कहीं अपने साथ शेयर करा है। लेकिन अगर आपनों अपनी बेटी के साथ व्यवहार ही जदि तो या गंभीरतापूर्वक हो आप हर वक्त एक माँ बाप जो होन को कहीं रोप झाड़बो करा कि भाई तू यहाँ नहीं कर सके बयान नहीं कर सके मैं थारा माँ बाप आ मैं कहवा जी करी तो बीरू कहीं बा अपने मन की हर बात ने अंदर ही दबान लाग जाए और उल्टो आपने बतावे नहीं है नहीं। तो बेना देखो इरा बारे में बात तो हालता ना आगे भी मैं करूँगा पर अब

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बिना देखो टेम तेजियों बदली है, है नी? और ये संचार क्रांति रा युग में अपना टाबरिया अपनो घना जाना है और समझे। उर्बानी परिपक्वता आपरी उम्र भी खनी हुए इर वास्ते आपने आंसा ते छोटा टाबरिया जेड़ो व्यवहार नहीं करन, बड़ारी तरह समझदारियों व्यवहार करनो। घनी बार आपा बाने टाबरा जेड़ी चंचलता देखन, आपा बाने साथे छोटी बालिका समझन माने डांट डबटरो भी बर्ताव करा। इर वास्ते बिना देखो आपने अपनी युवा बेटियां साथे व्यवहार करता टेम घनी सावधानियां राखनी, क्योंकि देखो कहीं बिना कि अपनी घनी टोका टाकी अपनी लाडली में ने घणो कुसेल और जिद्दी भी बना देवे, क्योंकि वो उम्र रो देखो एड़ो ही पड़ा होया करे। क्योंकि देखो कुछ तो हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण अपनी किशोरी ई उम्र में घनी भावुक हो जावे, माने छोटी छोटी बातों पर भी घणो गुस्सो आवे। और ऐडी स्थिति में बिना आप अपनी लाडलिया पर खींच उतारा अविश्वास करा तो बाना और अपने बीच रा संबंध खराब हो जावे और हो सके कि वे गुमसुम रहन अवसाद री शिकार हो जावे, या पछे बाने मन में थानो डर रम जावे और वह कोई उत्पीड़न का शिकार बन रहा हो तो भी आपकी माँ ने बहन ने किने ही नहीं बता पावे। इस वास्ते बिना देखो आपकी सियानी होती बेटी रे साथ है सहेली जेड़ो व्यवहार करनो, अपना आदेश भी पर नहीं थोपनो, बिना टेम बने भी टेम बने प्यार हूँ समझावनो ही एकमात्र उपाय हो। अपनी सियानी होती बेटी ने देखो विचारा ने मनोभाव ने जानने की कोशिश करनी, बाना संपर्क में रहनो और बाना भरपूर प्यार स्नेह देवनो। लेकिन अगर देखो पानी कोई अनुचित मांग हुए तो थोड़ा सख्त भी रहनो, वही देखो चोखा माता पिता रो फर्ज है नी। तो बिना देखो जब भी थानी शानी होती बेटी ने भी बेचारा माए देखो मनोभाव में जिया बदलाव हुए नहीं तो माने समझने की कोशिश करनी और हर बात प्रेम करने बैठावन समझावनी, जिन्हों देखो भाभी अपनी बात रो मान रखे है नी। तो बिना देखो बात तो भला आगे भी करा ला, अब आर सुनाओ प्यार सो गीत।

बेना आज गीत तो थाने बहुत चोखा चोखा लाग रहा हो नहीं, क्योंकि आज तो मैं घना ही चोखा चोखा मस्ती भरा गीत अपनी बेना ने सुना रही हूँ, है नहीं। तो बेना देखो आप क्या करें नहीं कि जट है काम है बट है कर्म है नहीं, जड़ी मेहनत आपा मनु करा आपने बैठो ही परिश्रम रो फल भी मिल जावे। इस वास्ते मीनक ने देखो आलस ने त्याग कर पूरो मन और तनु कोई भी काम न करना जीरों की बिरो परिणाम भी अच्छो ही मिले। और देखो बिना मेहनत के तो मीनक ने कुछ भी हासिल नहीं हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन ही कर्म वास्ते ही बनियो है और मनुष्य अपना निरंतर शर्मु ई दुनिया ने बनायो और नित नई प्रगति करी। इस वास्ते देखो अपने जीवन में श्रम को जितो महत्व है बितो महत्व कोई वस्तु रो नहीं है, क्योंकि अपनी मेहनत रे बल पर ही आ सारी दुनिया चल रही है और अपने सब ने देखो बिरो लाभ भी मिल रही है। और देखो बिना श्रम भी दो प्रकार रहो है, शारीरिक और मानसिक। आन दोनों श्रमों ही मेहनत ना तो फायदा हो ही है। शारीरिक मेहनत करने हो बिना देखो अपनो शरीर निरोगो हष्ट पुष्ट रहे, तो मानसिक मेहनत करने हो दिमागी कसरत हो जाया करे, है नी। जी कि देखो आप देखा ही हाँ कि शारीरिक मेहनत करने वाला मनुष्य रो स्वास्थ्य तो चोखो रहे ही है, इरे साथ साथ है वीर पर बढ़ती उम्र रो प्रभाव भी कम आया करे। और इरे विपरीत आराम रहन वाला मिनक जगह आलसी जीवन बितावा नहीं, सब काम करने जी चुराता रहे, बाना मिनका ने घनी तरह की छोटी मोटी बीमारियां घेर लेवे और वे आराम को जीवन जीता हुआ भी मानो स्वास्थ्य चोखो नहीं रहन के कारण दुखी रहे। इस वास्ते देखो अपने शरीर कुछ ना कुछ काम करवाता रहो। और अन सबू चोखो तरीको है कि मीनक ने अपना छोटा मोटा काम कहीं खुद ही करना, जिनू की अपना काम खुद कर ले परिवार दूजा मिनका पर भी बिरो भार नहीं पड़े और बिना खुद रो भी शरीर भी चाल तो फिर तो रहे और स्वस्थ रहे, है नी। और ई तरिया देखो अपनो मनोरंजन भी हो जावे, क्योंकि देखो जब भी मिनक कोई काम करे तो वो कोई ना कोई व्यक्ति जगह जुड़ी उड़ो हुए और बैठेरी संस्कृति रहन सहन प्रकृतियों परिचित होवे जीरो वो आनंद रो अनुभव करे। इस वास्ते देखो बना आलस जीवन बितावन की जगह अपने कुछ ना कुछ काम जरूर करता रहो। आपा सामाजिक जीवन में अपनी भागीदारी तो निभाई सका हाँ और इरे साथ साथ है आपा समाज का महत्वपूर्ण भाग रो अंग भी बन जावा बीरू, है नी। क्योंकि बना देखो जको मिनक कुछ भी काम नहीं करे वो समाज अलग थलग पड़ जाया करे और बीरो महत्व भी कम हो जावे, है नी। और फिर मनुष्य जीव बनियो ही काम वास्ते है नी। तो इस वास्ते बना देखो बाता तो अपनी आज खनी होगी, अब क्यों नहीं थानू विदाई लेवनू पहला सुन लेवा एक प्यारो सो गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है, अब हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत फिल्म का नाम जब वी मेट, आवाज श्रेया घोषाल की है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर। पहला गीत अल्लाह जिलाई बाई की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर वार्ता की। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना यानी 35,000 करोड़ रुपये करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए, इनमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र शामिल हैं।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का समय कोलैब का समय है और इसके लिए किसी देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना अहम है।
1: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नसीराबाद केकड़ी देवली 4-लेन सड़क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है।
2: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन Phase 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों जान गंवाने वाली 5 प्रसूताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। जन सहयोग से इकट्ठा की गई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उधर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्रभावित ऑपरेशन थिएटर की जांच की जा रही है और इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
3: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से MTP करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेज है उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन थी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।

0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि तबादलों के दौरान ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन रखा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि डीईओ, प्रिंसिपल और लेक्चरर सहित हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी के सामान्य स्थानांतरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1वीं से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। प्रदेश में कल से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से मां और बच्चे के कल्याण के लिए दो संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं जनसंख्या स्थायित्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा को वर्चुअल रूप से यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौड़ ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
1: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया है कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
0: डीग जिले में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश मान ने बताया कि खरीफ सीजन में खाद और बीज की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व और समाज हित से जुड़े विषयों पर विभिन्न सत्रों में मंथन किया जा रहा है। पाली जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन और राजकोप सिटीजन ऐप की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न होने पर सजग रहें और पुलिस को सूचित करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव

24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले महीने की सबसे प्रमुख घटना पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होना रही। राज्य सरकार की पहल पर कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच सहमति बनने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया तथा गंभीरी नदी और नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा। बाद में तकनीकी कारणों से जल प्रवाह कम रहने पर किसानों ने फिर से आंदोलन किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी पूरे महीने जिले भर में चर्चा में रहा। अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, श्रमदान, पौधरोपण, फार्म पौंड निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने जिले का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। वहीं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म पौंड का भूमि पूजन कर किसानों से जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी पूरे माह आकर्षण का केंद्र रहे। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र लोगों को पट्टे दिए गए और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला मुख्यालय के शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। राज्य सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसका अवलोकन जनप्रतिनिधियों और आमजन ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1555 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मदर लैब शुरू की गई है, जहां 148 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां बांटी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोगों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपितों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास अर्थदंड दिया। जिले में बीते माह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई।

0: ईद उल अज़हा का पर्व जिले भर में श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन चैन तथा भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं अधिक मास के चलते जिले के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। निर्जला एकादशी पर भी कई धार्मिक आयोजन हुए। करौली की अरुणा शर्मा ने श्री अन्न पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाई है और जिले भर में अपनी नई पहचान बनाई है। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और मोटे अनाज के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावण सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुणो कर 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जावणो तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हलका माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू कीना और पूरा भया काम जनता ने सौंपया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान, गांवई हलकान स्कूलां माय शिक्षकां नी कमी नी आवण दी जावेला। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माय राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखीचियो। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य माथे जोर। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन सागे दोनों देशों बीच सहयोग मजबूत करण रे बारा माय चर्चा कीनी। ई पाछा जारी करी ज्या भेड़ा बयान माय दोनों नेता रणनीतिक भागीदारी बधावण रो स्वागत कीनो। वह कहो कि रिकॉर्ड समय माय करी ज्यो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौतो दोनों देशों सारू नुआ मौका बनावेला। ई करार साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुणो कर करीब 35,000 करोड़ रुपया लेवल ताई ले जावण माई मदद मिलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री न्यूजीलैंड यात्रा रे दौरान रक्षा, कारोबार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सरीखा न्यारा न्यारा हलका माए दोनों देशों बीच 18 करार मथ सही करी जी।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड माए बसियोड़ा भारत रा लोगा नहीं संबोधित कीना। वह कहो कि मौजूदा दौर एक दूजा सागे मिलर काम करन रो है और इन सारू किणी देश री आबादी नहीं बल्कि जनता रा भलारी भावना खास है।
2: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: इमोके न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री लक्सन दुनिया माय भारत रा बढ़ता रुतबा, प्रधानमंत्री मोदी री अगुवाई और न्यूजीलैंड रा विकास माय वठ बस्योड़ा भारत रा लोगा रा योगदान री सराहना कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अजमेर जिला रा केकड़ी हलका माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामा री शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। श्री शर्मा नसीराबाद केकड़ी देवली फोरलेन सड़क परियोजना रा पहला दौर रा काम री नींव रखी। आ परियोजना 3 दौर माय पूरी भेला। ई मौके राखी ज्या जलसा माय मुख्यमंत्री कहो कि सरकार जनता री जिंदगी आसान बनावण री लगातार कोशिश कर रही है।
3: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से

0: ने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
1: कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लारला दिना जापारे दौरान जहां 5 महिलाओं की मौत वेगी ही वाना परिवार वाला ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला माली मदद री रकम रा चेक सौंपया। आ परिवार ने संबल देवन सारू जनता री मदद सहयोग राशि भेली कर संबंधित परिवार ने 5-5 लाख रुपया री मदद दी रीजी। ई बीचे भीलवाड़ा और बांसवाड़ा रा सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन जापो करावन पाछे लारला दिना कुछ लुगाइयां री मौत रा मामला में अस्पताल प्रशासन किनी लापरवाही इनकार किनो है। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़ बतायो के शंका वाला ऑपरेशन थिएटर री जांच करी जा रही है और जापारी भगत इस्तेमाल करी जिया इंजेक्शन रा नमूना ही जांच सारू भेजी जिया है। वह जापारे दौरान गंभीर हालत में रेफर भैर आवन ने मौत रो कारण बतायो। बांसवाड़ा रा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव बतायो कि शुरुआती जांच में किणी भांत रा संक्रमण री ठा नी पड़ी है। वे बतायो कि मामला री आला दर्जा री जांच सारू जयपुर रा 5 डॉक्टरां री टीम बनाई जी है।
2: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी।
1: प्रदेश में उद्यमिता ने बढ़ावा देवन सारू चलाई जा रही रिको प्रत्यक्ष आवंटन योजना रो 12वां दौर 15 जुलाई ने शुरू भेला। इना तेज 132 औद्योगिक हलका में 5,000 औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स प्लॉट निवेशकों सारू मुहैया कराया जावेला। रिकोरा प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला बतायो कि ई दौर री ई लॉटरी 31 जुलाई ने निकाली जावेला। वे बतायो कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना रा तेत हाल ताई रा 11 दौर में 1,844 प्लॉट रो आवंटन करियो जा चुक्यो है। आरे जरिए राज्य में 18,000 करोड़ रुपयों बत्तो निवेश करियो जा सकेला और 37,000 बत्ता नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मथे इस समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि तबादला रे दौरान गांवाई और शहरी हलकां री स्कूलां में शिक्षकां रो संतुलन बनाई चियो है ताकि गांवां री स्कूलां में अध्यापकां री कमी नी हो। अलवर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका दिलावर कहो कि शिक्षा विभाग में तबादला रो काम पूरो हो गयो है। ध्यान जोग है कि DEO प्रिंसिपल और लेक्चरर समेत न्यारा न्यारा ओहदा माथे काम कर रहे हजारों शिक्षकों का तबादला करी जिया। हालांकि थर्ड ग्रेड अध्यापकों का तबादला इन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। राजधानी जयपुर में सगला कोचिंग संस्थान ने 31 जुलाई ताई आसान निकास नीति अपनावन रा हुक्म दिया जिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि कोचिंग सेंटर रा भवन आसानी निकलवा रा सुबिता और हिफाजत सा गई सगला संस्थान ने साफ नीति बनावनी फैला जिना तेत कोर्स छोड़बारी सूरत में विद्यार्थियों ने फीस पाछी मिल सकेला। इसा गई मानसिक तनाव रो सामो करण सारू लगातार काउंसलिंग ने जरूरी करी ची है। प्रदेश री सरकारी स्कूलां री 9वीं-12वीं कक्षा ताई दाखिला सारू अर्जी देवन री आखरी तारीख 25 जुलाई कर दी रीची है। माध्यमिक शिक्षा विभाग रा निदेशक सीताराम जाट आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि पहलियों 8वीं कक्षा ताई दाखिला रो काम आखा साल चालेला। प्रदेश माय काल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू भेला। राजस्थान और उन दो

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में हाजिर मैं आप रणवीर भाई और मारे हाथ हाजिर हुआ मनोज भाई। तो मनोज भाई राम राम।
2: राम राम रणवीर भाई आपने और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सगड़ा बाया बाया और नैना टावरा ने घना हेतु घना कोडू।

0: राम राम।
1: वाह सा गणे मान सु रामा सामा तो या पण हमके देखो कई दिना सु है जो किसान भाई पहली कई खेतियां करी और हमें बिरखा ने उड़ी केर कई जका उड़ी कई है कि भाई हाट या मोट बाव आर कोई कहे के आज मारे है जो बाजरी बावनी बाकी है कोई के मारे सवणा बावना कई जकी फसल आज बावन वास्ते उड़ी के बे हमें मानसून री जहां रुत आएगी तो रुत आएगी जने मानसून री बिरखा जट जट जून जू हो कई तरह री फसल री खेती अज भी हो
0: बिल्कुल भाई जान पहले अगे थी फसल कोई बोल ली कोई चारा की बोई है कोई बाजरी बोई है कोई मूंग मोट बोया है पापरी मानसून हुई बीटे में पंगे बोई गया पर अबे सचो कहवे नहीं वो मानसून वो तो अब आया ही है और आओ तो एक बार को थोड़ा धीमो पड़ गया रणवीर भाई ये दो चार दिन आपा जिला में दाल आपा शहर नागौर में कहते हैं आस पड़ोस क्षेत्र में कहते हैं जिला में कहते हैं अब हर हाल बरसात को मैंने लगे को नहीं मौसम
1: देखो यूं है कि आशा अमरदन
0: आए तो सही
1: भगवान री आशा रखनी जरूर क्योंकि देखो रुत रमाने रुत रुत है देखो ऐसी जम भाई हरियाली चारों तरफ रहे आज आप बात करा मनोज भाई चवड़ा री खेती चवड़ा जो कहने लोबिया कह दो बरबटी कह दो इरी खेती वास्ते जो सही पानी जट निकले भेड़ो नहीं वे दोमट मिट्टी है जो सब है
0: बिल्कुल बूढ़ी बात है
1: इन्हें जो खरीफ रही सीजन में जकी बुआई वह बा जून जुलाई यानी इन टाइम में वह वास्ते प्रति हेक्टर 15-20 किलो बीज 25 किलो यूरिया इन हिसाब है जो 40 किलो डीएपी है जो उपयोग करना पड़ा है यार फलियां एरी 40-45 दिन मान पकड़ हो
0: जाए बात बूढ़ी बात बताई है तो कोई बुआई करे जुलाई महीना महीना बार बरसात हो रही है तो कर सके बात करा भूमि को चयन यानी कि खेत की तैयारी ज्ञान करा खेत की तैयारी करने वास्ते मिट्टी की गहरी जुताई तो अपन वही है कार्बनिक पदार्थों भरपूर दोमट और बलुई मिट्टी है बा एक त्यौहार जान की जानी खेती वास्ते बढ़िया है और पहली जुताई है मिट्टी पलटना वाला हलू करनी चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी ने भरपूर भुरभुरो बना देना चाहिए पाटो लगा खेत ने समतल कर देना चाहिए
1: समतल देखो करियोड़ो हो जन बिरमान है जो बिरखार पानी भी सही तरह सोख ही नमी है जो बनी उड़ी रहे हिसाब है जो तैयारी कर पच है जो
0: कहे कोई भी चीज तैयारी प्री प्लान आप करा तो बढ़िया हुआ उन्नत किस्म की बात करें रणवीर भाई तो पूषा कोमल है पूषा फाल्गुनी है अर्का गरिमा है काशी कंचन है और एसी 101 है एज की बढ़िया है पूषा कोमल
1: है रोग रोधी है पूषा कोमल भी और फलियां वास्ते भी सब बढ़िया है भाई लोग जो देखो के चवणा री फलियां भी कई
0: सब्जी के रूप में
1: देखो सब्जी भी हुआ है बटे भी आ काम आवे है
0: अर्का गरिमा जी की फसल हुए ने बा सब्जी वास ज्यादा बढ़िया है काशी कंचन है अभी अपन अर्का गरिमा जी की सब्जी की फलियां वास है ज्यादा बढ़िया है और चौकी फलिया हुआ काची फलिया हुआ बाजार में बार भाव भी चोखा मिले
1: काशी कंचन जकिया है नी नस्ल उन्नत किस्म लंबी और गुंजेदार फलिया वास्ते है जो को फेमस है पूसा पालगनी है जो की जाड़ीदार किस्म है जो की हाट हितर दिनार मान पकर हो जावे त्यार एर पूसा कोमल है जो की फलिया वास्ते भी जोर रही है और बैक्टीरियल ब्लाइट जो को रोग वे बेणु प्रतिरोधी यानी कि बो है जो को रोग इन फसल ने माने इन किस्म ने माने लागे को नहीं
0: बीज दर की बात करा तो जाना बात है बताई भी ही और भाई अब नहीं बोवे तो 15-20 किलो प्रति हेक्टर तो कम कम बीज लागना चाहिए बीज उपचार है जी बोई पहली थायरम या कार्बोडेंजियम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करपरा और बोवे तो फफूंद रोधी रोग बचाव भी हो जाए
1: रोग है
0: बात करा दूरी की तो कतार वो कतार के पीछे 4550 सेंटीमीटर पौधा वो पौधा के पीछे 15 सेंटीमीटर और बीज है जी को 3-5 सेंटीमीटर गहराई के मायने वो होना चाहिए
1: खादरी जी बात करा तो बिजाई री टाइम प्रति एकड़ खेत्र मान लगे टगे 25 किलो यूरिया 40 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास तो नाखनी जरूरी जे मिट्टी में गोबर री खाद हड़ी उड़ी जे मिल जावे तो बिने है जो को बीजायु 15-20 दिन पहला खेत्र में है जो को अच्छी तरह माटी में मिला देना चाहिए
0: बात करना रहने भाई सिंचाई की तो सिंचाई भी बरसात के मौसम में कने कने नहीं बरसात हुआ तो जरूरत हो जावे और बाकी मायने सिंचाई की जरूरत नहीं बराबर ही हुआ परंतु गर्मी की फसल का मायने आवश्यकता अनुसार अगर अपन पानी की कमी लगे तो 7-10 दिन का अंतराल सिंचाई कर देवा और फूल आवण मा तो यानी कि अपन क्या करा

0: आंतरिक अवस्था भी टेम माता भी नमी बनाने वास्ते सिंचाई कर देवा तो चमड़ा का मायने बढ़िया दिया करे। निराई गुड़ाई की बात करा तो वही के 30-40 दिन के बाद में खेत के माय खरपतवार कर दिया निराई गुड़ाई कर दा और एक वास्ते एक बोर बार एक या दो बार निराई गुड़ाई और कर देवा तो आप अंगी चमड़ा की फसल निरोगी पैदा
1: मैं उपज रही तोड़ाई री बात करा नहीं तो चमड़ा री जे फलियां लग टके 40-45 दिनार माने तोड़ाई रे वास्ते उजावे और टेम टेम माते इन्हें जो को तोड़ तो रहना चाहिए। और उपज री बात करा तो हरी फलियां री उपज 100 किला प्रति हेक्टर ताई है जो को मिल सके। ए तो चमड़ा री खेती री बात मनोज भाई उगी पर एक खास बात है जो को आज भाई हम और करनी
0: है
1: बा एडी बात है कि बिरखारी टेम और पानी यूं देखा के बिरखारी टेम तो अपने यूं लगे के नाडी भरीज गिर नाडूलिया भरीज गया रे खेत भरीज गया जगिया जगिया ताल है जका ए पानी भरूड़ा दिखे पर आपा थोड़े दिन पस देखा के ओ पानी रो टोटो है जको पानी री कमी हगी जरे भाई हर किसान भाई कहवे के हर साल पानी है जको टूबेला रो नीचे जा रही हो कुआ रो नीचे जा रही यानी की पानी री जरूरत तो आगे आगे रेवे चाहे आपा घर में पानी री खपत री बात करा चाहे खेतमान खपत री बात करा तो इन वास्ते सरकार एक अभियान चला रही
0: है
1: एक अभियान चलायो जकेरो नाम है केस द रैन अभियान।
0: ओहो यानी बरसात में पकड़ो
1: एडो नाम हुनियो थे कदी
0: हां सुनियो तो प्रधानमंत्री जी भी बार नारो दियो
1: और देखो मैं हुन लो और किसान भाई भी हुन ले इरो नाम है केस द रैन
0: यानी कि पानी ने पकड़ो संरक्षण करो बचाओ
1: पकड़ो हम पानी ने की कर पकड़ो वो तो देखो के इंद्र भगवान बरसावे टोपा टोपा पड़े पर बिन तो देखो बुगलो पकड़ सके मनोज बुगलो कहवे के धरती पड़ी उड़ो पानी पिए को नहीं सांस ऊंची कर फट के गिट जावे
0: चातक चातक
1: यही हम देखो चातक बुगलो बिनो पड़ी किसान भाया ने के पानी जठे भी पड़ रही है चाहे आपने घर री छत माते पड़ रही है चाहे खेत में कटी भेड़ रही हो बिन आपा हैज को हिसाब पकड़ा के वो अपने पच काम आवे
0: बिल्कुल बूढ़ी बात की रणवीर भाई पहली बात है घर की गरी ये घर का अपना डागड़ा है छत्ता है बेको पूछ बारा काट धो धुआर एक बार सफाई कर लिया जो ही बरसात हुए और भी सीधा नलका पाइप ने टांका का मायना पंगाल दिया
1: और बट देखो के एडो जट नलको फूक जावे बट एडो बनाएडो राखा पानी रोटे है कि टांक ली टांको की जकेर माने छत्रो पूरो पानी है जको बीर माने आपा ले सका वो पच काम आजे
0: पर पीवन में काम आए और दूजो ही काम आए यानी खेत के मायने भी आपा कर सका खेत तड़ाई बनावा डाल के मायने तो पानी बेपरोट भी खेत तड़ाई के मायने आए डिगी बनावा
1: कई भाया रे एडी देखो मनोज भाई मैं देखी के पानी है जो डालने माने भाई लोग है जो भेड़ो करे और एक जगह तो मैं एडी भी देखी कि रेत रो धोरो जकेरे माते बाटा बिछायोड़ा बाटा बिछायोड़ा नीचे डलान ने माने एक पानी रो है जो एडी डिगी बनायोड़ी मेणिया लगा जो भी रेत रे धोरे माता हूँ पानी उतरे बिर खाऊ बाटा रे ऊपर पानी उतरे और डिगी लबा लब भरी साल है जो रोखड़ा लगा हुआ कहीं हरियाली है जो
0: समझो जमा पानी रहे
1: धोरे माता में पानी ले लियो
0: ले लियो और मोटर लगाई मान लो बिजली है तो मोटर लगा पानी छिड़काव कर ले नहीं है तो ट्रैक्टर में अपन मोटर लगी रहे भी छिड़काव कर सका तो पानी को उपयोग करने वास्ते क्या नहीं कर बचाव करा खूब भरण भी दिया करे
1: वो भी वह
0: भाई
1: जट डलानो पानी बहर जा रही है नेड़ो अपन कुओ है नेड़ो कोई कुओ है तो बिन में भी अपा पाइप लगा परो एर जे छोड़ दानी अणु तो बेड़ो वेड़ो देखो बस खेत में कहीं काम
0: रहो काम
1: फसल भी खराब हो जाए तो बिउ भी पानी रो जल इस तरह है जको बच जावे
0: बढ़ जावे
1: बिन आपा
0: खूब भरण भी कर पुनर्भरण खूब भरण कहते
1: हैं बरसात
0: कुओ पाछो भरी जा बरसात हो धरती को आकाश हो पानी धरती में जावे वो अपा के पानी को इस तरह जको पड़ा दे
1: एड़ा है जको किसान भाई बुगला बिन एर पानी ने है जको बहते नहीं जड़प ले जो बिरकारे वो ही एर जो ही बेड़ो कर ले जन है जको कैसता रहन अभियान सफल हुई
0: बिल्कुल सही है रेणु राय बात तो और चीत कराई एक आपा काम की बात सुना
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदान

0: सहायक योजना में सरकार देगी बराबर।
1: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मनोज भाई आपा तो हताई कर ली के भाई चावला री खेती इया करनी
4: चाहिए,
3: पानी ने है जको इया भेड़ो कर लेना चाहिए, पर किसान भयारा बिचार है जको चौपाल सु पाछा भया ताई बतावे कई बार अबे कई है जको पशुधन री बातें बतावे के आप रे खेती रा हम चार बता तो कई हम के गौत्र करियो
4: शरणवास गांव गयो मैं और एक धनराज जी ओझा जी का चारा की फसल रिजका और बाजरा के वास्ते बोई है, पशुओं वास्ते खेती करी है स्पेशल रूप तो पशुपालन भी करें खेती भी करें तो चारा की रिज का चारा यानी कि चारा को रिज का जमार और
3: भाई अगला काम बेड़ा ही कर रिया तो जब बयान था पूर्ति करा
4: बयान तक बेगा अनुभव भी पुगा
3: तो लो हुनो।
5: देखो भैया टाइम टाइम सरू किसान हूँ पशुपालक हूँ बातचीत करने वास्ते गांव गांव तेरे जाया कर रहा। आज मैं शरणवास गांव आया हूँ, अठे एक भाई खेत में खड़ा है, खेतीबाड़ी भी करें और पशुपालन भी करें, मोटो काम पशुपालन को है तो बातचीत करा देगा। राम राम सा।
6: राम राम सा। राम राम सा।
5: काय नाम है सा ताको?
6: और नाम धनराज है सा।
5: वाह भाई धनराज जी, ठीक है खेतीबाड़ी पशुपालन दोनों ही कर रहे हो हैं?
6: हाँ सर।
5: तो खेतीबाड़ी कितनी का है?
6: खेत अपन 16 बीघा है जमीन।
5: 16 बीघा है, 16 बीघा खेत है। सिंचाई कोई साधन दिख है?
6: हाँ सिंचाई ट्यूबवेल कराई है।
5: ट्यूबवेल कराई है, परंपरा ही है।
6: हाँ ट्यूबवेल पहला हूँ कराई है, अब सोलर प्लांट लगवा लियो।
5: अच्छा अच्छा, सोलर प्लांट को भी काम हो गया, बढ़िया बिजली की बचत भी हो जाए और पानी भी अपन घर को आवे, बिजली भी अपन घर की और पशुपालन भी करो और खेती में बार गाय करो है।
6: खेती में अपने गायों के वास्ते रिजगा बाजरी भयोड़ी है, रिजगा जड़िया जवार आवे जगह भयोड़ी है।
5: ठीक है, मतलब रिजगा बाजरी और रिजगा जवार कुल मिलाकर ताको खेती को काम है जी को पशुधन वास्ते है।
6: हाँ पशु वास्ते है, रिजगा बाजरी या जवार आई पशुओं वास्ते भाई इन गाई है कि नीरो रकम लागे बाढ़ मायने 2-3 बार बाढ़ी जावे लगातार 3 महीना तीन मैं इन्हें चराया करूँ लगातार।
5: और पशु भी चाऊ चरा है ना?
6: हाँ पशु तो जोर खावे और दूध ही बढ़िया हुए और एकदम पौष्टिक दूध हुए।
5: तो पहली बात तो आकर कितना पशु है तांगना?
6: हमारे 15-20 गाय है।
5: 15-20 गाय है तो गाय है और लाउ डंडा छोटा गाय के
6: टोकरा रोड़ी है चेक कर 30-35 किलो
5: 30-35 हो जाए कुल मिला डेयरी को काम भी बढ़िया है तांगना।
6: और तो पूछते नहीं काम, और डेयरी को ही है,
5: डेयरी को है और पशु खेती वाला जो काम है जो गाय वास्ते करो।
6: हाँ खेत गाय वास्ते पाओ
5: तो जवान भाई हो खासा लंबी लंबी है 5-5.5 फुट लगे मतलब तो अपा माता समान आईडिया तो कितनी बार कट जाता है?
6: देखो 3 बार कट जावे, एक बार में बाढ़ ली रहा, दूसरी बार पाची डाल रही है और बस तीसरी बार बाढ़ बाद तीसरी बार में पका ले बस सीखे तोड़ लिया पाच बीज जो जाए और फिर बाद में बाढ़ पाची कुतर कर गए नीर दे
5: कुतर फिर लाल लपूड़ा की कुतर भी काम आ जाए।
6: लाल लपूड़ा की
5: और आज की त्यौहार रिजका बाजरी की अभी मैं
6: अब भाई 3 बार बाढ़ी जावे
5: आज की तांगे रिजका बाजरी है अकड़ तक संपन्न हो जाए
6: लगभग चाल जाए पांच बार गहूं बाऊं पहला इना पा बाड़ ले और पांच पांच गहूं बाड़ दे
5: सियाड़ो फसल के पहले इन तोड़ ले और जितने तांगे गया वास आरो चारो भी हो जावे और तांगे दूसरो रिज का बाजरी को चारो भी हो जावे तो एक बार गाड़ लो तीजी बार में सीटा पकड़ लाटो गाड़ जवार बाजरी भेज और पूरा काम आ जाए। सही बात है,
6: 3 बार लगभग हजो चारो नीरी जाओ गायन फिर गाय स्वस्थ रहे बढ़िया रहे
5: कुल मिलाकर गया है ना चाऊ चर दूध चोको है।
6: हाँ दूध बहुत बढ़िया है और पौष्टिक है एकदम पेड़ पट है।
5: आप पहली बात आप कृषि की करी जी की तक खाली खेती बाड़ी तो पशुओं वास्ते करो और पशु तागन है 30-40 है तो एंकी अबार तो है मान लो रिजका बाजरी रहा दो और एक साथ कोई ठंडी चीज भी दो इनकी
6: दया कराएंगे मायने
5: सस्ता मिल जाए।
6: हाँ सस्ता मिल जाए खीर की जो और हरी चाहे बढ़िया काम करे
5: तरबूज और भी दो थोड़ा थोड़ा खा ले बीमारी मार बैठ डॉक्टर देखो।
6: हाँ डॉक्टर ज्यादा बीमार हो जाने बुला ला बाकी बीमार कम ही है जो चारों बढ़िया खाऊ मिले जाने बीमार कम ही है
5: यार खेत की खेत में रहे बाहर जाओ को नहीं
6: और खुली छोड़ू मैं तो बाहर छोड़ू को
5: नहीं
6: एक बीघा मायने पूरे बाड़ू बनाए वो देखो हला रहे एक मायने खुली छोड़ू
5: पंखा भी लगे दो पैर में ठीक रहे
6: पंखा का लगे है पानी डोल दू ट्यूबवेल कराई है और पेड़ पौधा लगे देखो चरा नहीं।

0: मजा लिए
1: कुल मिलार भागे गाय की व्यवस्था तो वास्ते में सेवा दे कर जीव सर हो गए भी अब हम आजीविका वो साधन तो चल रही है पर उनको रख रखाव भी थे बहुत चाहू करो किसी किसी नस्ल की गाय ना
0: आप हम देख ले सगली है लगभग जर्सी थार पारकर देसी कहीं रेंडी लाठी सगली मिक्स नस्ल की गाय है
1: अलग अलग है सगली भी है टाइम को एक गाय का दूध कितना गुजरा मैं सोचा तो
0: एक गाय को देखो 7 लीटर ले 10 लीटर तक हो गया है 10-12 तक हो गया है
1: 10-12 तक ये मान लो कासा 30 गाय हैं और 2-3 क्विंटल एक टाइम को हो जाए
0: हाँ कोई ब्याहन वाली देवे कोई छोटी भी यान कर करा 1.5 क्विंटल टाइम को लगभग हो जाए 1.5 शाम 3 क्विंटल के लगभग हो जाए
1: पर दूध गाय डेयरी में दो या शहर में दो
0: दूध मैं शहर के मायने दूं घर घर 55 रुपया लीटर हूँ दिया करो गाय को दूध तो ठीक है आप घर चो निकल जावे गायों की सेवा हो जावे और खेती बाड़ी का मायने है कि खाउन बाज दबाऊ जो कुमार खेती बाड़ी सगड़ो काम हो जाए
1: कुल मिला गाय खोन को खर्चो बहुत कम है
0: हाँ
1: लागत कम है अपा जी की ऐसी आमदनी है और ये सेवाओं तक कर खर्चो सब निकल जा
0: हाँ मार सगड़ो ईरू चले रहे हैं कि खाद हो जाएगी आई खेत के मायने नाग दू जो मन खाद न कौन की जरूरत पड़े को नहीं और बिरू बढ़िया धान हो जाए जो पाच बो कचरो एने गवा दू जो मागे वो सगड़ो फायदा ही है
1: बिल्कुल सही बात
0: खेती और पशुपालन दोनों साथ करे ना तो बहुत फायदा चीज है
1: बिल्कुल कह भैया साचो किसान वही है जो खेती और पशुपालन साथ करे और अब
0: खेती पशुपालन साथ करे तो नौकरी करने की जरूरत को नहीं
1: आज पढ़े लिखे भी हो
0: हाँ मैं एम ए बी एड ग्रेड हूँ थोड़ी तैयारी भी करी नौकरी लागी को नहीं मारी मैं तो एक दिन ना अब नौकरी मन जरूरत ही को नहीं
1: बराम बराम कुल मिला संतुष्ट हो
0: हाँ
1: देखो एक युवा और आज को युवा हर जगह एक नौकरी लगा यो करा तई पशुपालन कर रही हो खेती कर रही हो मैंने कहा कि अलग खानो पीनो दो कोई अलग बंद हो
0: हाँ अलग तो खानो पीनो देवा बंटन तो पहला शुरू करना पड़े की तेल देवनो पड़े और घनी गर्मी पड़े जना थोड़ा घी भी देवनो पड़े ताकि क्या आप नहीं फेंक देवे
1: तो धनराज जी गाया ना बार स्पेशल गर्मी में जाने एक तो तय बार की हरो चारो दे और गाउन पीणो गाय विशेष ध्यान दो
0: और जो दिया ना कई बार जो भी हूँ गाय एक बार जो ठंडो करे वो ग्याबन गाया नहीं देवा
1: ग्याबन नहीं दो और सामान्य गाया नहीं दो
0: सामान्य गाया ने तो पहले देवा को नहीं वो ग्याब ठहरे को नहीं
1: ग्याब यहाँ पर तो गुड़ गाय रात का बिजोर रखो पूरा
0: गुड़ हाँ रात का बिजोर देवा गर्मी के मायने गुड़ ठंडो दिया करा
1: पानी बिजोर मायने वा जमार गाल दो
0: और गर्मी के मायने जा सर्दी मायने गुड़ देवानी इने उकाल देवा बिरु मो काई गरम करे
1: सर्दी में लाव सी बन के सा अबारा जमार के लाव सी बन जा कुल मिलार है मिठो मिठो ही पशु धन कई गाय एक नई चीज खाने मिल जाए और खड़ और भी दोगी
0: हाँ खड़ सोयाबीन उड़द की चूरी
1: जड़े देखो तुझ को लगे था गाय सगले दिखे बहुत बढ़िया है और सेवा भी ताकि ठीक है बात करना है गायों को दूध को तय दे रहा हो तय पटिया लिखे हो भयान गाय कहने चाहो किसान भयान है पशुपालकन है खेती कना करनी चाहिए पशुपालन का ही भावना करना चाहिए
0: मैं तो आकर कहना चाहूँ कि सगला ने कही है कि पशुपालन और खेती बाड़ी साथ करे नहीं तो कोई आदमी ने नौकरी करने की जरूरत को
1: वही एक बिजनेस ही है
0: वही बढ़िया काम है और नौकरी बराबर की टक्कर को काम है कोई ने पूछने की जरूरत नहीं घर को काम है कोई कहने वालों को नहीं कोई सुनने वालों को नहीं
1: खेती टाइम मत ही पानी चाहिए
0: खेती टाइम मत पानी चाहिए गाय की रीज का बाजरी जमार भावे तो वह 3 बार फसल कट जावे और 10 जानवर के बीच यदि 2 बीघा में बाय ले तो कचरो नीरो नकाउन की जरूरत ही कौन पड़े बिरो गाय की लागत बहुत कम आवे
1: एक अलावा जान बरसात हो जाए तो मूंग मोट और भी बो
0: हां वाह वाह मूंग बाकी जकी जमीन है जान 12 13 बीघा पड़ी है नहीं मां मूंग और बाय देवा की
1: कुल मिलाकर अब पाजी अब आज भी मूंग मोट का बरसात हो
0: गई बरसात होता ही बाय देवा बरसात हुए
1: मतलब पांच जो की बरसात आऊं तो बाजरे मूंग मोट पजेगा कहीं तलेड़ा बीज है या बाजार मोल लो तो बाजार ले रहो बीज ही सगड़ा और खाद आज बजे
0: खाद तो आप देसी खाद ना का जो खाद
1: की गाय की
0: खुद की गाय की
1: खुद की गाय की खाद है जी पूरा खेत में दे दो
0: हाँ बाकी कोई यूरिया यूरिया किसी डीएपी एपी की जरूरत पड़ेगी नहीं देसी खाद ना क्या बात
1: कुल मिला जैविक खेती टाइप भी करो
0: हाँ जैविक ही है
1: एक बीज वालों लाओ बीज भी जैविक जाने लाओगे
0: हाँ बीज तो वो जो वो बढ़िया बीज हुआ जो कोई ले रहा हूँ
1: बीज बोलिए खाली बाकी खेती है जी की
0: बाकी जैविक ही है
1: जैविक ही है कुल मिलाकर खेती के मायने कोई घना रोगों कमी लगे
0: नहीं रोगों की लगे अपना दवाई में अभी स्प्रे स्प्रे कमी करा जरूरत पड़ेगी वो नहीं खाद ही नाका होनी डी ए बी भी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं
1: जो जरूरत पड़े तो मायने पर इलाज ही कृषि के मायने जैविक करो
0: हाँ जैविक हुए कई जान
1: नीमड़ा
0: नीमड़ा का है गुड़ उड़ जैविक बनाए पर और वो स्प्रे करता
1: और फसल

0: कोई खराबी और हुआ तो कर से हेल करो, बातचीत करो, पूछोगे।
1: हाँ कहीं कृषि विभाग बात कर ला और वो बतावे यदि कोई दवाई कोई स्प्रे करना तो वो जरूरी है तो वो करा यहाँ।
0: और कहीं धागे जाना अभी सिंचित है।
1: हाँ सर,
0: तो ट्यूबवेल भी है। हाँ। पानी क्या है?
1: पानी आपा ठीक है, मीठो ये ऊपर ही आपा तो 200 फुट माते पानी निकल।
0: बहुत बढ़िया बात है। कहीं माटी आटी की जाँच करो।
1: हाँ माटी की जाँच कराई है, चारांगानी जाँच कराई भी, बाद में भी हिसाब में खेती करा।
0: कुल मिलाकर कहीं की कमी बताई जी की पूर्ति वास्ते के झिड़कता वाला
1: नहीं आपा के तो देश घात नाका जो कमी की है कोनी की कोन बताए आपा के जगिया बायड़ी जी आधे को रंग सामने खड़ी है कहीं तो वो आपा के तो बढ़िया ही है।
0: हां इसका भाव जरी रहो तांगे जवार तो बोल थे इधर ना संतुष्ट हो।
1: मैं तो इधर नु
0: परिवार का ताना ना सब निकल जावे।
1: खेती पशुपालन। हां खेती बाड़ी पशुपालन दोनों साथ करे तो की कोई चीज
0: इस फसल रोप तो चालता चालता भयन गाई जानकारी देने जो सीख देने जो
1: मैं तो आई कहनी चाहूँ नौकरी लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो पशुपालन खेती बाड़ी सब साथ काम करे नी से पूरा परिवार तो कोई आदमी के की चीज की कमी कौन है और वो
0: आत्मनिर्भर हो
1: जाए। आत्मनिर्भर हो जाए
0: तो ठीक है। धनराज जी दया तावड़ी कराई थाने घनो घनो धन्यवाद। राम राम सा।
1: राम राम सा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ तो मनोज भाई, धनराज जी है जो अतई करी सारणवा शाला एक गणित जोरदार आप हमचार बताया। देखो पशु हीरा के है, रेहाते खेती करे है, चारे राज को फोड़ा को पड़े, चारे री फसल बाल लेवे जने हरियो है जो टेमो टेम पर सोन मिलता।
7: बिल्कुल मिल जा, केवे नहीं कि एक तो जीरो बजट खेती हर, ओ भाई है जो जीरो बजट पशु पालन नहीं करे।
6: ओ जन देखो की तो फायदो
7: है, मैंने सब का चीज करके वही पैदा हुए, खेत में पैदा हुए और भी रहूं सकड़ो आपको काम चला हुआ, और एकदम युवा पशुपालक और किसान है और बढ़िया आपको बिजनेस काम चल रही है।
6: तो मैं लाडले सप्ताह जो को भाया ना सवाल पूछियो, बताए तो
7: बिल्कुल सा पिछले सप्ताह आप सवाल पूछियो चौपाल हूँ कि तिल की खेती की तैयारी कना करनी चाहिए मोहन की, तो मानसून की पहली बरसात हुए बी टाइम तिल की बुआई कर देनी चाहिए,
6: तैयारी कर लेनी चाहिए। यार लगे हाथ बारी आज सवाल भी।
7: आज का सवाल है रणवीर भाई, चौड़ा की किसी एक उन्नत किस्म का नाम बताओ।
6: भाई लोग है जो उन्नत किस्म का नाम अपन बताई, मैं बाजार भाव री बात करना तो विचार है
7: कई भाव आज शुरू करो
6: बाजार भाव री। मैंने बताया था मूंग आज नागौर मंडी में बिकिया है 5,500 लेने 7,600 रुपया कुंटल ताई। काला तिल बिक गया 9,000-10,500 रुपया कुंटल, एर सफेद तिल बिकिया है 10,000 लेने 11,500 रुपया क्विंटल।
7: रणवीर भाई ज्वार की बोली लागी 4,500-5,600 रुपया प्रति क्विंटल, और गंवार बिकियो आज 5,000 लगा 5,870 रुपया, तारा मीरा की बोली आज लगी रणवीर भाई 5,500 रुपया लगा 5,800 रुपया,
6: सरसों का भाव रिया है 7,300 रुपया क्विंटल, जीरो बिकियो 17,000 लेने 22,300 रुपया क्विंटल, दाना मेथी बिकी है 5,000 हाथ लेने 6,000 रुपया क्विंटल तय।
7: रणवीर भाई इस सब गोल बिकियो 9,000 लगा 13,500 रुपया प्रति क्विंटल, तो सौंप की बोली लगी 7,000 लगा 15,200 रुपया, चना बिकियो था 5,000 लगा 5,300 रुपया तक,
6: असाड़ी रे भाव 5,800-6,025 रुपया तय रिया, सिंध सिवर बोली लगी 6,000 लेने 7,500 रुपया क्विंटल तय। ए तो भाव हो गया, पर हमें चौपाल बातें बातें हुई की भाई लोग उड़ी कह निकी
7: आज उड़ी गए, बिल्कुल अधिक सिंजापुर का आज बहुत पुराना लोक गीत अपा नागौर का कलाकार है शंकरलाल जी चतुर्वेदी, मैं की गायड़ी आज मैं की गीत सुनाओ भाई ना,
6: बादली बरसे क्यों नहीं रे।

0: तो देखो बादली बरसे क्यों नहीं है, शंकरलाल जी चतुर्वेदी और पार्टी द्वारा गायड़ो गीत हो भायाने दाया ये वाला
1: बारिश
0: आज किसी के रणवीर भाई बंजर भूमि करे पुकार वृक्ष लगा कर करो
1: श्रृंगार धरती रो श्रृंगार जो करना है तो हरा भरा बनाने वास्ते पेड़ लगाना पड़ी हमें घड़ी करे इशारो तो अपन आज रे किसान वाणी कार्यक्रम टाइम यो अठीज पूरो आपरा रणवीर भाई
0: और मनोज भाई ने दिरोसी करा राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत का सफर आप पूरा करेंगे अपने साथी आनंद पुरोहित के साथ। शुरुआत करते हैं फिल्म काला बाजार के इस गीत से मोहम्मद रफी की आवाज में।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

ये गीत था फिल्म कन्यादान का लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को फिल्म कश्मीर की कली में

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, अब आपको इंतज़ार होगा हिंदी फिल्मी गीतों का, फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गौरबंद सुनने का। तो लीजिए सुनिए हेलो गौरबंद।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों कहते हैं कि खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। दोस्तों अब आपको इंतजार होगा आपको अपने फरमाइशी गानों का, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं हरसुख देवासी बोल रहा हूँ, खारडा से।
0: हरसुख जी बात कर रहे हैं खारडा गांव से?
1: हाँ देवासी बोल रहा हूँ।
0: जी जी, हरसुख राम जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी।

0: खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी खेतों में क्या क्या बो रखा आपने
1: ए मूंग है, बाजरी है, गंवार है, सब
0: जी?
1: चीज बोरी है।
0: रेडियो कब सुनते हैं फिर आप?
1: हाँ रेडियो सुनता, फोन पर सुनता,
0: फोन पे सुनते हैं?
1: हाँ सब गाना, चौपाल कार्यक्रम सब सुना।
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ सब सुनते हैं।
0: हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बढ़िया, बहुत भारी लगता है सा।
0: जी हर्षुग्राम जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: हाँ फिर भी मैं नाम ले लूँ, टावरा है, मैं संगीता है, कल्लू है, उर्मा है, टापू है, परमेश्वर है, किशन
0: जी
1: है, माता जी ना चंदनी है,
0: जी
1: फूल बने अंगारा फिल्म गाने है, गोरी कब से जवान।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी। सर मैं इकबाल खान सिंजल बोल रहा हूँ, नागौर अजमेर या तीन लोग मोहल्ले से।
0: इकबाल भाई बात कर रहे हैं। सर क्या करते हैं आप?
1: सर मैं यहाँ आपके बाजू में ही है, ट्रांसफार्म का फैक्ट्री है कि जिला उद्योग के सामने धर्मकांटा फैक्ट्री, उसमें
0: उस
1: ट्रांसफार्म का काम करता हूँ।
0: क्या बात है सर, काम करते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं आप,
1: हाँ सर, वो रेडियो चलता रहता।
0: बहुत अच्छी बात है इकबाल भाई। सर कौन कौन से कार्यक्रम आप
1: सर
0: सुनते हैं?
1: सर मेरे को पुराने गाने पसंद हैं
0: जी
1: और युवानी पसंद है, ये परिहारी
0: जी
1: ये गाने पसंद है, पुराने ज्यादा पसंद है।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: हेलो फरमाइश बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है सुनते हैं जब।
0: जी आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर नूरी फिल्म का गाना है, नूरी
0: कौन सा गीत?
1: नूरी हो।
0: क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा गीत है, नितिन मुकेश की आवाज है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: सर मैं दिलवाली पठान तहसील चपड़ा जिला बारा से अमर सिंह बोल रहा हूँ सर। अमर सिंह जी।
0: अमर सिंह जी बात कर रहे हैं, 12 जिले से बात कर रहे हैं सर।
1: जी जी जी
0: अमर सिंह जी, आप इतनी दूर से बात कर रहे हैं, फिर हमारा चिरमी चैनल कैसे सुनते हैं आप?
1: सर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ मैं।
0: मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं।
1: जी जी जी
0: अमर सिंह जी, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, खेती किसानी करता हूँ मैं तो।
0: खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी खेतों में क्या क्या बो रखा है आपने?
1: पर सोयाबीन है, मक्का है,
0: जी
1: ये है सर।
0: यानी काम करते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं।
1: हाँ सर,
0: हेलो
1: मोबाइल
0: फरमाइश
1: ऐप के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल लार साथ रहता है, मोबाइल सुनता
0: जी। हेलो
1: रहता हूँ
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: सर। बढ़िया लगता है। हेलो फरमाइश, जब भी तुम्हें कॉल लगाया सही।
0: अमर सिंह जी, 12 का मौसम कैसा है अभी?
1: अभी सर यहाँ पर तो अभी बादल हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हुई थी,
0: जी
1: अभी तो बादल छा रहे हैं,
0: जी
1: बारिश
0: चलिए
1: का दौर चालू है अभी।
0: जी, बताइए सर, क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर आज हमें पिक्चर का गाना सुनना है,
0: कौन सा गीत?
1: गट्टा छा गई है बहार आ गई।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी सर, नमस्ते। मैं नागौर से गोविंद बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार, नागौर से गोविंद बात कर रहे हैं।
1: जी सर,
0: गोविंद जी क्या करते हैं आप?
1: मैं स्कूल जाता हूँ,
0: कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं गोविंद जी आप?
1: छठी में।
0: चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं गोविंद जी आपको?
1: बहुत बढ़िया लगते हैं, मैं स्कूल से आने के बाद ही सुनता हूँ रोज।
0: सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: सबसे अच्छा हेलो फरमाइश ही लगता
0: चलिए क्या बात है गोविंद जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: है, जो आपको अच्छा लगे।
0: ठीक है सर,
1: उससे
0: हम
1: पहले मैं मेरी बहन का नाम लेना चाहूंगा। सबसे लाडली मेरी बहन है,
0: जी
1: उसका नाम सोनल है।
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी और हमारी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। साथ में इसका प्रसारण भी गुरुवार को ही रात्रि 8 बजे से और शनिवार को रात्रि 8 बजे से किया जाता है। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ थे तकनीकी सहयोग दिया प्रतीक वर्मा ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:30 होने को है। अब सुनेंगे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम चिरमी। आज इसमें हम सुनेंगे सुनील शर्मा की गाए कुछ लोक भजन। तो लीजिए पहला लोक भजन।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से भी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमी, और इसमें आज आप सुन रहे हैं सुनील शर्मा के गाए कुछ लोक भजन। कार्यक्रम की अगली और आखिरी प्रस्तुति सुनील शर्मा की आवाज में।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम चिरमी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब समय है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

0: प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही का एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।

दूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगलस्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा, तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 8:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।